0: संडे मतलब आराम करने वाला दिन, लेकिन नहीं मेरी जान, संडे होता है लॉन्ड्री डे।
1: Only on MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।
0: क्योंकि यार घर से दूर रहने के बाद संडे के दिन ना एक ही प्लान होता है, वो होता है कपड़े धोने का। वो कहते हैं ना कि यार घर से दूर रहने के बाद जिंदगी हमें असली स्किल सिखाती है, और स्किल क्या होती है? कपड़े धोने का सही टेक्निक। जाग बनाओ, रगड़ो, नल के नीचे घुमाओ और फिर छत पर डालकर भूल जाओ। सिर्फ एक बकेट, एक डिटर्जेंट और थोड़ी सी हिम्मत। पेश है बचपन का दोस्त, बाल्टी नंबर वन। बस इतना ही लगता है ये स्किल सीखने के लिए। तो अगली बार कोई आपसे पूछे कि यार संडे के क्या प्लान से कैसे कर रहा है चिल, तो उसे भी कहना है कि भाई तू भी आ जा मेरे साथ चिल करने के लिए, और उसको भी थोड़ा काम थमा देना ताकि एक से भले दो हो जाए। फिर नेक्स्ट टाइम वो आपको कभी पूछेगा ही नहीं कि यार क्या प्लान है तेरे संडे के चिल करने के। सो ऐसे भी प्लान्स होते हैं भाई, कौन कहता है कि बस संडे आराम में गुजरता है, काम में भी गुजरता है। तो लगे रहो मेरी जान और सुनते रहो आरजे अदनान के साथ एमजीएम 90.8 एफएम।
1: Only on MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

0: दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे एक फिल्म नहीं एक इमोशन है।
1: संडे की सुबह का मजा कुछ खास है, चाय की चुस्की और रेडियो का साथ है, आरजे अदनान अब MGM पे सुनो धमाल करे ये संडे स्पेशल।
2: Only on MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।
0: राज और सिमरन की ये कहानी हमें सिखाती है कि प्यार के लिए सिर्फ सपने देखने चाहिए बल्कि उनके लिए लड़ना भी चाहिए। याद है वो सीन जब राज कहता है,
3: कोई बात नहीं सेनोरिटा, कोई बात नहीं, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
0: यह वो ट्रेन वाला सीन जब सिमरन दौड़ती है और राज उसका हाथ पकड़ता है। उस एक सीन ने कितनों को प्यार में भरोसा करना सिखाया। फिल्म के गाने तो जैसे दिल में बस गए हैं।
4: तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम।
0: आज भी सुनो तो लगता है वाह क्या गाना है यार, और क्या ही दिल के तार छेड़े इस गाने ने। और दोस्तों DDLJ आज भी मुंबई के मराठा मंदिर थिएटर में चल रही है। जी हाँ, हर दिन इसके शोज होते हैं और आज भी ना तो ये फिल्म इस थिएटर में हाउसफुल जाती है। तो कभी आपका मुंबई जाना हो गया तो DDLJ देखने का मन कर दिया तो यार थिएटर में जरूर देखिएगा। तो जरा सोचिएगा कि उस दौर में ये कितना पॉपुलर रहा होगा प्यार का सफर। तो चलिए फिर आप इसी प्यार के सफर को आगे बढ़ाते हैं और बढ़िया से 90s के इसी फिल्म से DDLJ से गाने एंजॉय करते हैं।
1: संडे की सुबह का मजा कुछ खास है, चाय की चुस्की और रेडियो का साथ है, आरजे अदनान अब MGM पे सुनो धमाल करे ये संडे स्पेशल।
2: Only on MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

0: 90s वाले शो में आरजे अदनान आपके साथ आया है आपकी ये मॉर्निंग गुड करने के लिए। आप भी ना तो 90s के बच्चों में से होगे, तो संडे की सुबह कुछ और ही थी यार। उस वक्त सुबह 9 बजे से पहले सब काम खत्म कर देते। आज तो हम 9 बजे तो उठते हैं यार। सिर्फ एक ही काम इम्पोर्टेंट होता था, वो था दूरदर्शन पर कार्टून देखना, मोगली, डक टेल्स और उसके बाद रंगोली, और हाँ, माँ के हाथ की गर्मा गर्म पूरी आलू का नाश्ता। टीवी का रिमोट नहीं होता था, एंटीना घुमाना पड़ता था और टेरेस पर जाकर थोड़ा टाइम वेस्ट करके थोड़ी मेहनत भी करना पड़ती थी। और आवाज आती थी नीचे से कि सिग्नल आ रहा है क्या, फिर नीचे से चिल्लाते थे हाँ आया आया सिग्नल, फिर कोई कहता था चला गया सिग्नल। अरे ये संडे वाली सुबह आज भी याद आती है यार। बस फर्क इतना है कि तब वक्त धीरे चलता था और खुशियां छोटी छोटी चीजों में छुपा करती थी। आज वक्त तो बहुत फास्ट चल रहा है लेकिन खुशियां कहीं ना कहीं गुम होती हुई नजर आ रही है। तो आपका भी कोई संडे मॉर्निंग का यादगार पल हो, किस्सा हो, तो मुझे जरूर बताइएगा। डीएम कीजिए इंस्टा पर आरजे अदनान इस इंस्टा पेज पर, या आप कॉल भी कर सकते हो 9359320080 पर। फिलहाल 90s वाले शो में और भी ढेर सारी बातें होगी और 90s को याद करने की कोशिश होगी कुछ ही देर के बाद। स्टे ट्यून्ड ऑन एमजीएम 90.8 एफएम।
1: Only on MGM 90.8 FM. साथ है तो बात।

0: शादी का सीजन शुरू हो या और आज है संडे और संडे के दिन तो शादी होती ही है, लेकिन क्या करें यार, बेचारी जिसकी भी शादी होगी ना वो थोड़ा परेशान तो हो ही जाएगा क्योंकि बारिश का मौसम भी शुरू है ना। तो महफिल अधूरी लगती है।
1: झूठे तो पैसे लो।
0: सब बड़े छोटे ना तो एकदम मस्त तरीके से नाचते थे और मेहंदी की रात बिल्कुल डीजे नाइट होती थी। आज के जैसी डीजे नाइट नहीं, उस जमाने की एक अलग वाली छोटी सी डीजे नाइट जिसके अंदर ये गाना मेहंदी वाला बजता ही था।
2: मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, लेने तुझे गोरी, आएंगे तेरे सजना।
0: वैसे बताओ फिर आपको ना तो इन गानों से कौन सी शादी की याद आ गई है बचपन के 90s के, जरूर बताना। और कुछ किस्सा हो तो मेरे साथ जरूर शेयर करना है। DM on Insta RJ Adnan। बाकी तो यार 90s वाले शो में और भी बहुत सारी बातें करेंगे 90s की, लेकिन कुछ ही देर के बाद। तब तक के लिए बेहतरीन से गाने एंजॉय कीजिएगा और सुनते रहिएगा RJ Adnan के साथ MGM 90.8 FM।
1: Only on MGM 90.8 FM. साथ है तो बात।

0: दोस्तों आजकल सब कुछ HD 4K सिनेमैटिक हो चुका है, लेकिन 90s की शादी की एक अलग ही बात थी, वो शादी की कैसेट CD वाली। याद है वो ब्लू या ग्रीन कवर वाली CD जिसमें हर गेस्ट स्लो मोशन में चल रहा होता है और बैकग्राउंड में बजता था मेरे अंकल जी का डांस जूम में, बच्चों का फिर वो कैमरे के सामने फुजूल में भागना। एक बात तो मुझे आज तक समझ में नहीं आई कि ये बच्चों को ना तो शादी के वक्त भागने में क्या ही मजा आता था, और लास्ट में 10 मिनट का फुल बफेट का शूट, जो कुछ खाना खा रहा है ना तो वो सब कुछ हमें कैसेट में दिखाई देता था पहले वाले। अरे भाई वो CD एक फैमिली ट्रेजर होती है, आज भी कभी मिल जाए ना तो पूरा परिवार हंसी में लुटपुट हो जाता है वो कैसेट देखकर, वो शादी की हो या किसी और फंक्शन की हो 90s के वक्त में। और स्पेशली 90s का वो फैशन देखने के बाद पता चलता था कि तब से लेकर अब तक ना तो कितना सारा फैशन चेंज हो चुका है। क्या आपके पास भी ऐसी कोई शादी की CD है या VCD है, इसमें बहुत सारी यादें छुपी हो और वो देखने के बाद अचानक से ना तो आप 90s के दौर में चले जाते हो, तो ये एक खास बात होती है इन फोटोज की और इन CDs की। इसलिए कहा जाता है कि फोटोज खींच लेनी चाहिए, फोटो देखकर हम वक्त में थोड़ा पीछे जा सके। तो अभी वक्त का तकाजा है, इसलिए अब अगला गाना एंजॉय करते हैं 90s वाला ही। स्टे ट्यून विद RJ अदनान ऑन MGM 90.8 FM।
1: Only on MGM 90.8 FM. साथ है

0: संडे स्पेशल में संडे मॉर्निंग से लेकर शादी की सीरीज तक 90s की यादों का फुल ऑन तड़का मिला ना आपको। आपके चेहरे पर मुस्कान लानी हो तो 90s की यादों से बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। वो दिन, वो लोग, वो फीलिंग सब कुछ असली था। आपको कौन सा पल सबसे ज्यादा कनेक्ट हुआ आज के शो में मुझे जरूर बताइए। मैसेज कीजिए 9359320080 इस व्हाट्सएप नंबर पर, या तो फिर आप मुझे इंस्टा पर भी डीएम कर सकते हो आरजे अदनान इस इंस्टा पेज पर। मैं आपका दोस्त और होस्ट आरजे अदनान, और एक ही आपसे तमन्ना करता हूँ कि यार आप और कौन कौन से टॉपिक पर सुनना चाहेंगे रेडियो पर 90s वाले, मुझे ज़रूर बताइए इसी कॉन्टैक्ट नंबर पर जो मैंने अभी आपको दिया है। क्योंकि यार जब तक आप मुझे नहीं बताओगे ना तो मुझे भी नहीं समझ में आएगा कि आप कौन सा टॉपिक पर सुनना चाहोगे। सो 90s के पल बहुत हसीन होते हैं, आपकी भी कुछ 90s वाली यादें होगी ना तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। फिलहाल शो में 90s की बातें यहीं रुकाते हैं, लेकिन बाकी बातें ना तो अभी बहुत सारी जारी रहेंगी कुछ देर के बाद। स्टे ट्यून ऑन MGM 90.8 FM।
1: Only on MGM 90.8 FM. साथ है

0: MGM 90.8 FM साथ है तो बात है।
1: आरजे अदनान के साथ यानी कि मेरे साथ ही संडे स्पेशल शो एंजॉय कर रहे थे और फिलहाल अभी वक्त हो गया है मेरा आपसे अलविदा लेने का, टाटा बाय बाय करने का। मैं तो चला अब अपनी गली आज का संडे फंडे एंजॉय करने का। अब हम मिलते हैं ठीक मंगलवार को, क्योंकि मंडे को भी मेरा ऑफ होता है, इसीलिए मैं अब जा रहा हूँ। ठीक है, अपना वीकेंड एंजॉय कीजिएगा, संडे फंडे एंजॉय कीजिएगा। और आप आज क्या करने वाले हो, कौन सी मूवी देखिए और ये मूवी आपको कैसी लगी, ये भी मुझे जरूर बताइएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टाटा बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर। स्टे ट्यून ऑन MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।
0: Only on MGM 90.8 FM, साथ है तो

चाहे कॉलेज में हो या घर पर, देश हो या विदेश, अब आपके फेवरेट आरजे और सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू सिर्फ एक क्लिक दूर। कहानियाँ जो दिल छू जाए, बातें जो जिंदगी बदल दे, सब मिलेगा एमजीएम 94.8 एफएम रेडियो ऐप पर। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए एमजीएम 94.8 एफएम, साथ है तो बात है।

का आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MGM 94.8 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

0: कुछ आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
2: MGM 90.8 FM साथ है।

चाहे कॉलेज में हो या घर पर, देश हो या विदेश, अब आपके फेवरेट आरजे और सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू सिर्फ एक क्लिक दूर। कहानियाँ जो दिल छू जाए, बातें जो जिंदगी बदल दे, सब मिलेगा एमजीएम 94.8 FM रेडियो ऐप पर। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए एमजीएम 94.8 FM, साथ है तो बात है।

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे। अपना रेडियो, अपनी बातें, गीत, खबरें, जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

की मन पसंदीदा आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MGM 94.8 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

0: एक फ्रीक्वेंसी नहीं, यह है आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।
2: हेलो, हाय, नमस्कार, छत्रपति संभाजी नगर,
3: तुम्ही ऐकत आहात MGM 90.8

0: कुछ आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
1: MGM 90.8 FM साथ है।

0: ये सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी नहीं, यह है आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।
0: ये है FGM 90.8 FM।

मन पसंदीदा आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MG94.8 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

0: कुछ आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे,
2: मैं हूं साथ तेरे, मैं हूं साथ तेरे।
1: तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
1: MGM 90.8 FM
3: साथ है तो बात है।
4: गौरी मांडवा खाली।

0: दिल की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।
2: हम राह

0: कुछ आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
1: MGM 90.8 FM।

कॉलेज में हो या घर पर, देश हो या विदेश, अब आपके फेवरेट आरजे और सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू सिर्फ एक क्लिक दूर। कहानियाँ जो दिल छू जाए, बातें जो जिंदगी बदल दे, सब मिलेगा एमजीएम 94.8 एफएम रेडियो ऐप पर। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए एमजीएम 94.8 एफएम, साथ है तो बात है।

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

का आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MGM 94.8 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

0: बाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

0: आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
2: MGM 90.8 FM साथ है।

0: ये सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी नहीं, यह है आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।

मन पसंदीदा आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MGM 94.8 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

चाहे कॉलेज में हो या घर पर, देश हो या विदेश, अब आपके फेवरेट आरजे और सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू सिर्फ एक क्लिक दूर। कहानियाँ जो दिल छू जाए, बातें जो जिंदगी बदल दे, सब मिलेगा MGM 94.8 FM रेडियो ऐप पर। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए MGM 94.8 FM, साथ है तो बात है।

0: आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
2: MGM 90.8 FM साथ

लाखों दिलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ है। हाँ जी हाँ, और भी होंगे दिलदार यहाँ, लाखों दिलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ। ये बेमिसाल हुस्न